0: रेडियो एनआरएन 99.1
1: खरो विषयमा सारो बहस नेपाली बहस
2: यस नेपाली बहस का साथमा प्रीति तयारी चौचौ
3: ग्लोबल आईडी बैंक सबैका लागि बैंक
4: डिशोम फाइबरनेट

यूजिंग एआई टीवी में हेर्नुस फुटबल को हर एक एक्साइटिंग मोमेंट एआई पिक्चर एंड साउंड संग अप टू 30% कैशबैक र 0% ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ बेस्ट एक्सचेंज वैल्यू प्लस 4 इयर्स फुल वारंटी अब घरमै स्टेडियम एक्सपीरियंस एलजी लाइफ्स गुड.